0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: 5 मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है, कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो.

0: प्यार हो गया, प्यार शार कुछ नहीं होता, शादी होगी तो अरेंज।
1: प्यार, ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ भूख, जिस्म की भूख।
2: प्यार यश चोपड़ा के गीत है।
3: प्यार, प्यार इज टू चिल।

0: प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता है, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता है, रंगों पे नजर पड़ने लगती है, और अब अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है। हर पल हर पल हमेशा एक ही नाम होता प्यार का, नैना।
1: अमन
2: आचार्य।

0: प्यार हो गया? प्यार शार कुछ नहीं होता, शादी होगी तो अरेंज।
1: प्यार, ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ भूख, जिस्म की भूख।
2: प्यार यश चोपड़ा के गीत है।
3: प्यार, प्यार इज टू चिल।
4: प्यार अभी बनाना।

0: प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता है, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता है, रंगों पे नजर पड़ने लगती है, और अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है। हर पल हर पल हमेशा एक ही नाम को तो प्यार है,
1: नैना
2: अमन
1: स्वीट।

एंड वेलकम टू अच्छा दिन 90 एफएम। मैं आपका होस्ट इंदोष शब्बीर शेख लेके आया हूं आपके लिए कहानियों की गुल्लक। बचपन से हमें हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, पर मैं सच कहूं तो हिस्ट्री मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। द रीजन बीइंग, हिस्ट्री में जो कहानियां या जो किस्से हुए या जो हकीकतें घटी है उनको जानने के लिए मैं हमेशा बेताब रहता। मैं हमेशा जब टीचर्स उन लम्हों को दोहराते तब मैं हमेशा इसी कोशिश में रहता कि वो चीजें मेरी आंखों के सामने चले। मैं उन चीजों को इमेजिन करने लगता और उन्हीं इमेजिनेशन में से मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ्रीडम फाइटर में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का किरदार इतना अट्रैक्टिव, इतना ऑरा से भरपूर, जैसे नेताजी की बात सुनो या कोई नेताजी की बात करे तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाए। Or else you could tell me that I was very fond and I am still fond of Netaji. So मैं लेके आया हुआ आज एक कहानी नेताजी की, बर्लिन से आजादी तक, बर्लिन से आजाद हिंद सेना तक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो कहानी जहां एक आदमी ने सिर्फ सपना नहीं देखा बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। 1941 का वक्त था, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर, दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान, और इन दोनों के बीच एक हिंदुस्तानी खड़ा था, नाम सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उस वक्त दुनिया उसे एक और नाम से जानती थी, नेताजी। कोलकाता की एक सर्द रात सुभाष अपने कमरे में अकेले बैठा था, टेबल पर इंडिया का नक्शा पड़ा था, उसके सामने ब्रिटिश ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स थी और एक तरफ गांधी जी की स्पीचेस। सुभाष ने धीरे से आंखें बंद की, अहिंसा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंग्रेज बिना खून बहाए कभी नहीं जाएंगे। उसकी सोच थी, वो मानता था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। उसने इंडियन सिविल सर्विसेज क्लियर की थी, आराम की जिंदगी मिल सकती थी, पावर, रिस्पेक्ट, मनी, सब कुछ मिल सकता था। लेकिन नेताजी ने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक बात थी। वो हमेशा लोगों से कहते, मेरा देश गुलाम है और मैं चैन से कैसे जी सकता हूं। नेताजी के दिल में जो क्रांति थी वो लोग अक्सर सुनते थे, लोगों को अक्सर सुनने मिलता था। नेताजी की आंखों में जो आजादी के लिए एक जोत जलती थी वो हमेशा लोग देख सकते थे उसको। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को प्रेसिडेंट चुना गया। यंग लोग पागल थे उनके लिए, उनकी स्पीचेस में आग होती थी। वो कहते थे, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट्स टेकन। लोग तालियां बजाते थकते नहीं थे, चीख पड़ते थे, चिल्लाते थे, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कई सीनियर्स लीडर को लगता था कि नेताजी बहुत अग्रेसिव है, उनका अप्रोच काफी डेंजरस है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि महात्मा गांधी के बीच, महात्मा गांधी शांति चाहते थे और नेताजी एक रिवॉल्यूशन। एक मीटिंग में गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि रूम में सन्नाटा छा गया था। गांधी जी ने कामली कहा, वॉयलेंस हमें आजादी नहीं देगा। नेताजी ने सीधा जवाब दिया, लेकिन स्लेवरी जरूर देती रहेगी। रूम जम गया। वो सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं था, वो दो लोग अलग फिलोसॉफी का टकराव था, वो दो अलग फिलोसॉफीज का टकराव था। और धीरे धीरे सुभाष चंद्र जी कांग्रेस में अकेले पड़ने लग गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुभाष जी से, नेताजी से बहुत डर लगने लगा था क्योंकि उनकी स्पीचेस इतनी ज्यादा लोगों में पसंद की जाती थी। लोग उनकी स्पीचेस सुनकर इतने ज्यादा इंडिपेंडेंस के लिए जाग उठते थे, क्रांति के लिए जाग उठते थे। उनके दिल में नेताजी ऐसी बातें करते थे कि लोगों को जोश आ जाता था। 1940 में नेताजी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हर वक्त पुलिस उन पे नजर रखती थी। चार पुलिस अफसर उनके कमरे के बाहर,
20 से 50 अफसर उनके पूरे घर के बाहर। नेताजी बाहर निकले तो पुलिस ऑफिसर, अंदर जाए तो पुलिस ऑफिसर, हर जगह जैसे उनको मानो सिर्फ ब्रिटिश पुलिस के नजर में ही रखा गया हो। लेकिन ब्रिटिश एक चीज भूल गए थे, सुभाष चंद्र बोस जी इतने इंटेलिजेंट थे कि जिस तरीके से वो सोच सकते थे उस तरीके से कोई सोच नहीं सकता था। एक रात जनवरी 1941 में घर के अंदर सब सो रहे थे, बाहर गार्ड्स खड़े हुए थे। सुभाष जी ने धीरे से अपनी दादी को टच किया। सुभाष जी ने अपना रूप बदल लिया, एक पठान, लॉन्ग कोट, टोपी और फेक आइडेंटिटी, नेम जियाउद्दीन। रात को अंधेरे में वो घर से निकल गए। गार्ड को लगा कोई नॉर्मल आदमी जा रहा है, और उस रात ब्रिटिश एम्पायर की आंखों के सामने से इंडिया के सबसे डेंजरस रिवॉल्यूशनरी निकल गया। सुभाष जी का मिशन इम्पॉसिबल था, इंडिया से निकलना, ब्रिटिश इंटेलिजेंस से बचना और जर्मनी पहुंचना। फिर वहां सुभाष जी ने बहुत सारे प्लान बनाए। वो कोलकाता से पेशावर गए, फिर अफगानिस्तान गए, फिर सोवियत रूट से हर जगह रुकते हुए हर जगह खतरा मंडराता रहा, पर वो सारी बाधाओं को, सारे खतरे को पार करते हुए निकल पड़े। एक बार अफगानिस्तान में एक आदमी ने उन्हें गौर से देखा, सुभाष जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पहचान गया क्या मुझे? आदमी उनके पास आया और धीरे से बोला, आप हिंदुस्तानी हो? सुभाष जी चुप रह गए। आदमी मुस्कुराया, डरो मत, मैं भी अंग्रेजों से नफरत करता हूं। उस रात सुभाष जी को पहली बार एहसास हुआ उनकी लड़ाई सिर्फ अकेली नहीं है, उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं बाहर से भी। पूरी दुनिया में लोग ब्रिटिश रूल से नफरत करते थे, ये इस बात का अंदाजा अब सुभाष जी को लग चुका था। और फाइनली सुभाष जी ने जर्मनी में एंट्री ले ली, बर्लिन। स्नोफॉल हो रही थी, नाजिस का रूल, हर जगह सिर्फ मिलिट्री, स्वस्तिका वाले फ्लैग्स। सुभाष जी कार से उतरकर धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। जर्मन ऑफिसर्स उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी को जो ब्रिटिश एम्पायर को तोड़ना चाहता था। जर्मनी को अपॉर्चुनिटी दिखी उनमें, एनिमी ऑफ एनिमी इज फ्रेंड। सुभाष जी को ऑफिशियल प्रोटेक्शन दी गई और यहीं से शुरू हुआ एक डेंजरस अलायंस।

0: स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे नेताजी का सफर कि कैसे नेताजी अब जर्मनी पहुंच गए, और जर्मनी पहुंचकर उस समय जैसे कि आप जानते हैं हिटलर इतने फेमस थे कि क्या बताएं। और यही एक चीज है हिस्ट्री की, इतिहास की, जो हमेशा हमारे आंखों में वो चमक पैदा करती है कि हमें वो सब इमेजिन करने लगाती है कि नेताजी हिटलर से कैसे मिले होंगे, हिटलर से क्या बात हुई होगी, हिटलर ने उनको कैसे प्रोटेक्शन दी, उनसे कैसे बात की, नेताजी कितने क्लेवर थे कि उन्होंने हिटलर को कैसे अपनी सारी जो जरूरत थी उसके लिए मनवाया। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। नेताजी की हिटलर से पहली मुलाकात कैसे थी, चलिए देखते हैं। एक मैसिव हॉल, नाजी ऑफिसर्स लाइन में खड़े हुए, और सामने एडॉल्फ हिटलर। नेताजी अंदर है, हिटलर ने उन्हें ऑब्जर्व किया। क्या तुम सच में ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर सकते हो, हिटलर ने कहा। नेताजी सीधा हिटलर की आंखों में देखकर बोले, इंडिया के 38 करोड़ लोग अगर उठ खड़े हुए तो ब्रिटिश एम्पायर तो गिर ही जाएगा, और ऐसा गिरेगा कि जैसे कभी था ही नहीं। हिटलर ये सुनकर इंप्रेस हो गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी कॉलोनाइज्ड नेशन के लीडर में इतना कॉन्फिडेंस देखा था। और फिर क्या, हिटलर इतना इंप्रेस हुआ कि हिटलर और सुभाष जी की बात इतनी चली कि वो जो मीटिंग, जो छोटी सी मीटिंग होने वाली थी, अब वो काफी ज्यादा लंबी हो गई। बहुत सारी बातें हुई, मैप्स बिछाए गए, मैप्स को ऑब्जर्व किया गया, उस पर स्ट्रेटजीज बनाई गई, वॉर कैसे होगा वो डिस्कस किया गया, सारी चीजें बताई गई, अलग अलग तरकीबें, अगर ये प्लान है, अगर ये फेल हुआ तो प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा, ना जाने कितनी बातें हुई होंगी उस वक्त। पर नेताजी ने एक डिमांड रखी, और वो डिमांड थी, मुझे इंडियन सोल्जर्स चाहिए। वो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो ब्रिटिश आर्मी में थे और जर्मनी ने कैप्चर किए थे, नेताजी उन्हें आजादी के लिए लड़वाना चाहते थे। हिटलर ने कुछ सेकंड सोचा और फिर बोला, यू शैल हैव योर आर्मी। और फिर वहां से क्या, आजाद हिंद सेना। जर्मनी के कैंप्स में हजारों इंडियन सोल्जर्स थे, थके हुए थे, टूटे हुए थे, बहुत ज्यादा तो कंफ्यूज भी थे। उन्होंने ब्रिटिश के लिए फाइट की थी, अब प्रिजनर्स थे। एक दिन कैंप में अनाउंसमेंट हुई, एक इंडियन लीडर तुमसे मिलने आ रहा है। सब क्यूरियस थे। नेताजी स्टेज पर चढ़े, उनकी आवाज हॉल में गूंजी, तुम ब्रिटिश के सिपाही नहीं हो, तुम भारत मां के बेटे हो। रूम में सन्नाटा था, किसी की आंखों में आंसू आ गए तो बहुत सारे लोग रो पड़े। नेताजी ने फिर कहा, मैं तुम्हें रोटी नहीं, तुम्हें भूख दूंगा, मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं, जंग दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चले तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक सोल्जर्स खड़ा हुआ, हम आपके साथ हैं नेताजी। और उसके बाद क्या, पूरा हॉल गूंज उठा, जय हिंद के नारे लगने लगे। यहीं से बनी आजाद हिंद सेना। इंडियन सोल्जर्स को जर्मनी मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई, वेपन्स, कॉम्बैट, रेडियो कम्युनिकेशन, एक्सप्लोसिव, मार्च ड्रिलिंग्स, न जाने कितने तरीके की ट्रेनिंग जर्मन सोल्जर्स द्वारा इंडियन सोल्जर्स को मिलती रही, और धीरे धीरे नेताजी ने एक इतनी बड़ी सेना तैयार की कि जिसका जवाब शायद अब ब्रिटिश के पास नहीं होने वाला था। सुभाष जी हर कैंप विजिट करते थे, हर सोल्जर्स के नाम याद रखते थे। वो सिर्फ लीडर नहीं थे, वो एक होप थे, एक ऐसी होप जो हमें आजादी दिला सकती है। जर्मनी के स्नोवी कैंप में इंडियन सोल्जर्स ट्रेन हो रहे थे। कई लोग पहली बार इतनी ठंड देख रहे थे, हाथ जमे थे, बूट्स टूटे जाते थे, लेकिन नेताजी रोज आते। एक दिन एक सोल्जर बीमार पड़ गया, ऑफिसर ने कहा रिमूव हिम फ्रॉम द ट्रेनिंग। नेताजी ने मना कर दिया, वो खुद उस सोल्जर्स के पास गए, ब्लैंकेट दिया और बोले तुम सिर्फ सोल्जर नहीं हो, तुम हिंदुस्तान का फ्यूचर हो। सोल्जर रो पड़ा। उस वक्त सोल्जर को समझ में आ गया था, यह आदमी पावर के लिए नहीं लड़ रहा, ये सच में इंडिया के लिए लड़ रहा है, ये सच में इंडिया के लिए जान देने के लिए तैयार है। नेताजी के इस सफर में एक और खास पहलू था, एक और खास लम्हा, एक और आजादी की मूवमेंट जिसका नाम था आजाद हिंद रेडियो। नेताजी ने जर्मनी में एक पावरफुल वेपन यूज किया जिसका नाम था रेडियो, आजाद हिंद रेडियो। हर रात उनकी आवाज सीक्रेटली इंडिया तक पहुंचती थी। यह आजाद हिंद रेडियो है, लोग छुपके छुपके रेडियो सुनते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट पैनिक में थी क्योंकि एक आदमी थाउजेंड्स ऑफ मील्स दूर होकर भी इंडिया में रिवॉल्यूशन जगा रहा था। सुभाष जी की आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये एक कसम थी, ये एक ओथ था, ये एक जज्बा थी, ये एक जज्बा था, ये एक प्रेरणा थी। लेकिन कहते हैं ना, सारी चीजें अगर स्मूथली चलने लगे तो आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। और फिर एक ऐसा दौर आया कि जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की। एक मीटिंग में हिटलर ने इंडिया के फ्यूचर पर रेसिस्ट कमेंट किया। सुभाष जी का चेहरा गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्होंने तुरंत हिटलर को अपोज किया। कोई भी नेशन इंफेरियर नहीं होता, रूम साइलेंट। नाजी ऑफिसर्स शॉक थे क्योंकि हिटलर को ओपनली चैलेंज करना मौत को इनवाइट करने जैसा था, लेकिन नेताजी किसी से डरते नहीं थे। उनके लिए इंडिया की डिग्निटी सबसे ऊपर थी। हिटलर ने नेताजी की तरफ देखा और सरप्राइजिंगली कहा, गुस्सा नहीं हुआ, वो समझ गए थे यह आदमी किसी का पपेट नहीं बन सकता, यह आदमी अपने देश का गुलाम है, ना किसी ब्रिटिशर का।
1: बल्ली कितने?
2: ओ देश मेरे।

स्वागत है दोस्तों आपका। ब्रेक के बाद हमने देखा कि इंडिया में जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेताजी को अपने नजरबंद कैद बंद कर लिया, लेकिन नेताजी इतने चालाक थे कि अपना रूप बदल लिया और बदलकर अफगानिस्तान से होते हुए कैसे किसी तरीके से जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचने के बाद उनको हिटलर मिले, हिटलर से कैसे उन्होंने अपनी सेना मांगी, इंडियन सोल्जर्स मांगे, कैसे उनको ट्रेन किया और कैसे फिर एक छोटी नोकझोंक हिटलर और नेताजी के बीच में हुई। लेकिन उस समय का सबसे शक्तिशाली इंसान कहिए या नेता कहिए हिटलर, उसके सामने लोगों की जबान नहीं खुलती थी, पर वहां पे भी नेताजी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी हिम्मत दिखाई और बताया कि कैसे उनके लिए देश सर्वोपरि है। अब सोल्जर्स तो मिल चुके थे, लेकिन आगे का प्लान क्या था, तो चलिए देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा। जर्मनी यूरोप में बिजी थी। सुभाष जी को समझ आ गया था कि इंडिया तक पहुंचने के लिए जापान बेटर ऑप्शन है। जापान ऑलरेडी ब्रिटिश टेरिटरीज पर अटैक कर रहा था, तो एक इनसेन प्लान बना, जर्मनी से सबमरीन ओशियन क्रॉस करके जापान, वर्ल्ड वॉर के बीच एनिमी वाटर्स के बीच माइंस में वॉरशिप से होते हुए जहां सब मौतें लाशें बिछी होंगी, लेकिन ये सब करना खतरे से खाली नहीं था। पर नेताजी भी आसान काम थोड़ी करते थे, नेताजी वही सब करते थे जो किसी के बस की बात नहीं। सब जगह सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी थी, सब जगह पानी, माइंस, बड़ी बड़ी वॉरशिप्स, बम, बारूद, गोली, सब कुछ। ये सारे इम्पॉसिबल चीजों के बीच में सुभाष जी ने काम ले जवाब दिया। आजादी इम्पॉसिबल लोगों को ही मिलती है, और फिर क्या, शुरू हुई उनकी सबमरीन जर्नी। डार्क ओशियन, जर्मन सबमरीन, क्लॉस्ट्रोफोबिक टनल्स, नो सनलाइट, नो सर्टिनिटी, हर सेकेंड मरने का डर। एक रात सबमरीन में इमरजेंसी अलार्म बजा, एनिमी शिप इज नियर बाय, लाइट्स ऑफ, कंप्लीट साइलेंस। सब सोल्जर टेंस थे। सुभाष कॉर्नर में क्वाइटली इंडिया का मैप देख रहे थे। एक ऑफिसर ने पूछा, आपको डर नहीं लगता? सुभाष ने, नेताजी ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, डर तो उसी दिन मर गया था जब मैंने देश को गुलाम देखा। और क्या, नेताजी की ये बात सुनकर ऑफिसर स्पीचलेस रह गया। नेताजी की बस इसी हाजिर जवाबी की जो जो उनसे मिलता वो लोग कायल हो जाते, जो जो उन्हें लोग सुनता वो कायल हो जाते। इतने ज्यादा हाजिर जवाबी थे नेताजी कि आप क्या, अगर एक सवाल हो तो ना जाने उनके पास कितने जवाब। फाइनली सुभाष जी जापान पहुंच गए। यहां उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। INA ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन नेताजी ने उसमें जान डाल दी। थाउजेंड ऑफ इंडियंस ज्वाइन करने लगे, औरतें भी ज्वाइन करने लगी। रानी झांसी का दल बना, एक वुमेन बटालियन। उस वक्त दुनिया के लिए शॉकिंग कंसेप्ट, नेताजी के लिए नहीं। वो कहते थे, आजादी सिर्फ मर्दों का हक थोड़ी है, औरतें भी इसमें हिस्सा ले सकती है, औरतें भी लड़ सकती है। और इसी के साथ उन्होंने बनाई एक बटालियन जिसका नाम रखा रानी झांसी। चलो दिल्ली, सिंगापुर, ह्यूज रैली, लाखों लोग और स्टेज पर नेताजी। उनकी आंखों में जुनून था। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, चलो दिल्ली। क्राउड पागल हो गया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद के नारे गूंजने लगे। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। उस दिन लोगों को लगा आजादी सच में आ सकती है और आजादी बहुत करीब है।
इंडियन नेशनल आर्मी सोल्जर्स बर्मा फ्रंट पर लड़ने लगे, जंगलों के बीच, बारिश में, बीमारियां, बॉम्बिंग्स। ब्रिटिश आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल थी, बहुत ज्यादा उनके पास रिसोर्स भी थे, लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी के पास एक चीज थी, जुनून। वो जुनून जो नेताजी ने दिया था। एक यंग सोल्जर डाइंग स्टेट में था, नेताजी उसके पास बैठे। सोल्जर धीरे से बोला, हम जीतेंगे ना नेताजी। सुभाष जी की आंखें भर गई, एक दिन तिरंगा जरूर लहराएगा। सोल्जर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए अपने प्राणों की उसने आहुति दे दी। वॉर टर्न होने लगा, जो एक समय स्ट्रॉन्ग था वो जर्मनी वीक होने लगा। जर्मनी वॉर हार रही थी, जापान वीक हो रहा था, इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट कम मिलने लगा था, लेकिन नेताजी गिव अप करने वाले नहीं थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स भी सीक्रेटली उनके रिस्पेक्ट करने लगे थे, क्योंकि वो सिर्फ अभी पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक कमांडर बन चुके थे। एक ऐसे कमांडर जिन्होंने एक बटालियन में जान फूंक दी। नेताजी की बटालियन में अब लोग पूरी इंडिया से जुड़ने लग गए, और वो आजादी का सपना जो नेताजी ने देखा था, अब उनकी बटालियन में, अब उनकी सेना में मौजूद हर एक इंडियन ने देखा। उनकी सेना की ये खासियत थी, ना उसमें कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई पंथ, कुछ भी नहीं देखा जाता था। देखा जाता था तो सिर्फ एक सपना, वो एक सपना आपके अंदर जिंदा होना चाहिए, और वो सपना था आजादी का। इस तरीके से नेताजी ने अपने कमांडर्स बनाए थे, इस तरीके से नेताजी ने अपनी सेना बुनी थी, इस तरीके से नेताजी ने अपनी सेना को तैयार किया था, और इसी सेना को वो तैयार

बदमिस्त्री शुरू हुई। कई लोग मानते थे कि उस प्लेन में नेताजी नहीं थे और ये कहते थे कि उसी प्लेन से नेताजी सीक्रेटली इंडिया में आ गए। कई लोगों का मानना था कि उस प्लेन में नेताजी थे। ये बात आज भी एक मिस्ट्री है, एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक नहीं सुनी, लेकिन एक सच आज भी अनडिनाइबल है कि एक आदमी ने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। एक आवाज आज भी जिंदा है। इंडिया फाइनली 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हिस्ट्री बुक्स में कई नाम लिखे गए, लेकिन जब भी करेज की बात होगी एक नाम हमेशा गूंजेगा, सुभाष चंद्र बोस। वो आदमी जो हिटलर के सामने भी नहीं झुका, वो जो सबमरीन में मौत के साथ ट्रैवल कर रहा था, वो जो सोल्जर्स को होपलेस से उठाकर रिवॉल्यूशन बना गया, वो जो कहता था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और वो लाखों लोग सच में उनके लिए जान देने को तैयार हो गए, क्योंकि कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और कुछ लोग हिस्ट्री लिखते हैं। उन्हीं में से एक नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। थैंक यू। सो दोस्तों, ये कहानी सुननी हमने नेताजी की, मेरे सबसे फेवरेट फ्रीडम फाइटर, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर की जिनकी न जाने हम कितनी भी कहानियां सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि कम ही है। एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनको हम अगर कोई मूवी बने या कितनी भी चीजें बने नेताजी पे, तो हम अगर बैठ कर भी देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने अभी तक बहुत कम देखा है। नेताजी के पास उनकी जीवन शैली, उनकी जीवन एक ऐसा जीवन रहा है जिसमें हर दिन पर न जाने कितनी मूवीज, कितनी किताबें लिख सकती थी, क्योंकि उनके इतने आइडियाज, उनके इतना सारा उनके अंदर जुनून, इतना सारा जज्बा था कि उनकी अगर स्पीचेस लोग सुन पड़े तो अगर आज भी लोगों का अगर मोरल डाउन है तो वो मोरल बढ़ जाए। अगर आप हताश है तो आप फिर से झूम उठे, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा कर देते थे नेताजी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, कहानियों की गुल्लक में सुनाएंगे आपको फिर से कोई नई कहानी, और देखेंगे कि और क्या नया नया आपके लिए ला सकते हैं, आपको क्या नया सुना सकते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM एंड खुश होते रहिए, बिकॉज इट्स योर ओन रेडियो। थैंक यू।

Hi everyone, this is Mohit Lalwani. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना अच्छा लगा. सब्सक्राइब टू द चैनल, नीचे एक बेल आइकन बना हुआ है छोटा सा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी अगली वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहेंगी. ऐसे प्यार करते रहिए. लॉट्स ऑफ लव. राधे राधे.

0: ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: भाई बहुत खूब गोई बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
2: मियां, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुर्दा, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

0: तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नसम क्यों सुनाई? मेरी सोई हुई जज्बात फिर से जाओ,
1: पिछली बातें भूल जाओ मीना।
0: भूला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में?
2: मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना।
0: मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने
2: मिस्टर घोष से ब्याह किया। यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
0: गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में कोई शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम?
2: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दोगी ना? तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, जानती हो? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीना चाहती? मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की।

0: कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: भाई बहुत खूब गोई बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
2: मियां शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुर्दा, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

0: तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नसम क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाओ,
1: पिछली बातें भूल जाओ मीना।
0: भूला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में?
2: मैं तुम्हारी जिंदगी से गया ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना।
0: मैंने कोई गलती नहीं की, हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने
2: मिस्टर घोष से ब्याह किया, यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
0: गलत इल्जाम ना दो मुझे, तुमने मेरा प्यार पाया लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं प्यार ही नहीं भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम?
2: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दोगी ना, तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, जानती हो? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीना चाहती हो। मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की जाती है।

अंधेरी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये।

जेनी को तो मैं ऐसे बदल दूंगा कि वो स्टाइल क्वीन कैटरीना कैफ लगेगी। टच मी टच मी टच मी।

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: 5 मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।